एक फिल्म जो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के रूप में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय एंट्री थी। इसे हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये फिल्म सिनेमैटिक महाकाव्य के रूप में देखी जाती है। देश की ऑल टाइम हिट ये फिल्म है कल्ट क्लासिक मदर इंडिया। इस महान फिल्म के जनक निर्माता निर्देशक महबूब खान को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। सभी सुनने वालों को आज के मुबारक दिन की

महबूब खान ने कई अभिनेता और अभिनेत्रियों के करियर को स्थापित करने में मदद की, जो 40, 50 और 60 के दशक में बड़े सितारे बने। इनमें सुरेंद्र, अरुण कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार, निम्मी, नादिरा और नरगिस के नाम शामिल हैं। महबूब खान ने दूसरे मॉस्को फिल्म इंटरनेशनल में जूरी के सदस्य के रूप में शामिल हुए और वो 2 साल तक भारतीय फिल्म महासंघ के अध्यक्ष भी रहे। फिल्म उद्योग में इतना ऊंचा स्थान रखने वाले महबूब खान की जिंदगी की शुरुआत काफी मुश्किलों भरी रही। ये किस्सा बयान करेंगे इस गीत के बाद, जो हमने चुना है फिल्म अंदाज से। आवाज है मुकेश की।

9 सितंबर 1907 को गुजरात के नवसारी जिले के बिलीमोरा में जन्म हुआ महबूब खां का। बहुत कम उम्र में ही वो मुंबई आ गए और फिल्म निर्माता नूर मोहम्मद अली मोहम्मद के अस्तबल में काम करने लगे। एक दिन उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक चंद्रशेखर की शूटिंग देखी और उनसे गुजारिश की कि वो उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दें। उनके निर्देशन में इतनी रुचि देखकर चंद्रशेखर ने नूर मोहम्मद से कहा कि आप इस लड़के को फिल्म स्टूडियो में चाहे छोटे मोटे काम करने के लिए रख लें, लेकिन इसको फिल्मों के आसपास रखें, सेट्स के आसपास रखें। और फिल्म स्टूडियो में काम करते हुए महबूब खान ने निर्देशन की बारीकियां सीखी, जो कि आगे चलकर उनकी फिल्मों के रूप में सामने आई। आन फिल्म से अगला गीत पहुंच रहा है आप तक, आवाज है मोहम्मद रफी की।

जब महबूब खान ने फिल्म स्टूडियो में काम करना शुरू किया वो दौर था मूक फिल्मों का। करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ मूक फिल्मों में छोटे बड़े रोल भी किए, जैसे जान, दिलावर, जरीना और चंद्रहास। इसके बाद उन्होंने कुछ साइलेंट मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। पहली बार स्वतंत्र निर्देशक के रूप में जिस फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला वो थी अल हिलाल। साल था 1935 का। यह फिल्म सफल रही और इसके बाद उन्होंने सागर मूवी टोन की कई फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे कि मनमोहन, डेक्कन क्वीन, जागीरदार, वतन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और अलीबाबा। फिलहाल अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म अनमोल घड़ी से। आवाज है नूरजहां की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ये गीत था फिल्म अनोखी अदा से और आवाज थी उमा देवी की। कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं मदर महबूब खान की और याद कर रहे हैं उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर। 40 के दशक में महबूब खान ने महबूब प्रोडक्शंस के नाम से अपनी खुद की फिल्म कंपनी शुरू की। उनके प्रोडक्शन में आई पहली फिल्म तकदीर थी, जिसमें उन्होंने पहली बार नरगिस को मुख्य अभिनेत्री के रूप में पर्दे पर उतारा। नरगिस का असली नाम फातिमा था, जो कि बेबी रानी के नाम से कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम भी कर चुकी थी। उन्हें नरगिस नाम महबूब खान ने ही दिया था। तकदीर के बाद हुमायूं और अंदाज जैसी फिल्मों में महबूब खान ने नरगिस को मुख्य अभिनेत्री के रूप में पेश किया, लेकिन उनके सबसे चर्चित फिल्म रही मदर इंडिया, जिसके लिए नरगिस को कालोवी वीरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर इंडिया दरअसल 1940 में बनी एक फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म का नाम था औरत, जिसे महबूब खान ने ही डायरेक्ट किया था।

मदर इंडिया फिल्म से ये गीत आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में। महबूब खान के प्रोडक्शन में बनी ज्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे वो फिल्म ऐलान हो, अनोखी अदा, आन अमर या अनमोल खड़ी। उनके निर्माण और निर्देशन में आई आखिरी फिल्म सन ऑफ इंडिया थी, जिसकी पटकथा और कहानी महबूब खान ने ही लिखी थी। तो इसी फिल्म से यानी सन ऑफ इंडिया से आपको सुनवाते हैं गीत शांति माथुर की आवाज में।

सन ऑफ इंडिया के अलावा वतन फिल्म की कहानी और अल हिलाल की कहानी पटकथा भी महबूब खान ने लिखी थी। 28 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण महबूब खान का निधन हो गया। इसे एक साल पहले 1963 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2007 में महबूब खान की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था।

मीडियम वेव 192.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 28 तारीख दिन है गुरुवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री तुतन टाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अंटू कुमार दास और सुश्री शिखा डेका, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री तुतन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मेरी मिव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: cities across Madhya Pradesh are celebrating Eid ul-Adha today in a peaceful and joyful atmosphere. We have a report.
1: In Bhopal, thousands gathered at the historic Tajul Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down 4 Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last 8 after Thailand's world number 2 Kunlavut Vidithsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश अब समाचार विस्तार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए ये ओएसएम की व्यवस्था है पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही इसको मैं दायित्व लेता हूं

0: कैसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय की सीमा और

0: मुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90%

0: की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे मन्हर उदास से श्री लक्ष्मी मंत्रो जाप। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।
2: ओम शांति शांति।

लक्ष्मी गायत्री, गायत्री मंत्र के समान ही महामंत्र है। गायत्री परात्पर ब्रह्म के ध्यान से सिद्ध होती है। उससे सांसारिक विभूतियों के कारक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। किंतु लक्ष्मी तो प्रकृति सृष्टि का साक्षात स्वरूप है। यदि संसार के ऐश्वर्य

धन धान्य के अभावों के कष्टों से संघर्ष करता व्यक्ति लक्ष्मी गायत्री का जाप करता है तो वो अभावों के समुद्र को बिना प्रयास ही पार कर जाता है। लक्ष्मी गायत्री से व्यक्ति जीवन की सुविधाओं को भोग कर प्रभु की कृपा से सुखद शांति प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री सूक्त को होम पूर्वक पूर्ण करके लक्ष्मी गायत्री के जप की 11 मालाएं फेरने से मनुष्य के दुख दारिद्र्य और अभाव का विनाश होता है और परम शांति प्राप्त।

श्रोताओं, भी आप आज सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत मनहर उदास से श्री लक्ष्मी मंत्रो जाप आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मनहर उदास की आवाज में श्री लक्ष्मी मंत्रो जाप। इसके साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आज आप सुनेंगे मियाली सिदिसो और साथी कलाकारों की आवाजों में चंद आकाश समुदाय नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत मियाली सिदिसो और साथी कलाकारों से चंद आकाश समुदाय नगमों का आकाशवाणी के तवांग के

0: मियाली सिदिसो और साथी कलाकारों के इन्हीं आकाश समुदाय नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच के अंतर्गत मेजर रलिंगनाव बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय तवांग की संग्रहालय समन्वयक कुमारी सांदी लिगम सिंहफो और संग्रहालय मार्गदर्शिका कुमारी लोपसांग चुकी से मेजर रलिंगनाव बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय के महत्व विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी ड्रेमा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रलिंगनाव बॉब खातिंग की वीरता का संग्रहालय में आए हुए हैं और हम यहां पर मुलाकात करने जा रहे हैं यहां के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सनली लिगुम सिंहफो जी से। तो सनली जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
3: थैंक यू।
2: श्रोताओं, शायद आपको याद होंगी कि इस संग्रहालय के उद्घाटन गत 31 अक्टूबर 2024 को हमारे देश के वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पाटिल या उन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस संग्रहालय के उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आसाम के शहर तेजपुर से वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो श्रोताओं, आपने इस संग्रहालय के बारे में सुने तो बहुत होंगे और आप में से कई लोग यहाँ पर दौरे भी कर चुके होंगे, लेकिन इस म्यूजियम के बारे में विस्तार से आज हम संजी जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। जी हाँ, तो हम म्यूजियम में पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले प्रवेश द्वार के सामने ही देखने को मिल रहे हैं कि द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन, तो इसकी विशेषता क्या है, इस बारे में संजी जी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
3: आप म्यूजियम जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले सोल ऑफ इंडिया ही दिखेगा। तो इसका रीजन ये है कि सोल ऑफ इंडिया हमने इसलिए बनाया ताकि हम इंडिया को एक तरह से यूनाइट कर सके। तो हमने सोचा कि अगर हम इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमारे शेयर्ड स्ट्रगल्स, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो कहानी है उसी की मदद से हम हमारे इंडिया को ट्रूली यूनाइट कर सकते हैं। तो इसी वजह से सोल ऑफ इंडिया, जैसे ही आप म्यूजियम एंटर करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एंड देन सोल ऑफ इंडिया पर आपको टोटल 36 कैस्क मिलेंगे। तो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, सो होल ऑफ इंडिया से हमने कलेक्ट करके यहाँ पे सारी सॉइल रखी हुई है। ईच एंड एवरी लोकेशन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जगहों से कलेक्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने दीपा से कलेक्ट की है। दीपा पर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारा झंडा वहीं पर लहराया गया था, तो हमने दीपा से कलेक्ट की है।

0: और फिर झारखंड जैसे जगहों से भी कलेक्ट की है, जहाँ पर नीलांबर और पीताम्बर एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वहाँ पर उन्हें एक पैर पर हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उस जगह से भी हमने कलेक्ट की है। तो हमारे रिसर्च के द्वारा हमने उस एग्जैक्ट पैर को ढूंढ निकाला, फिर हमने उसी जगह से कलेक्ट, तो सिमिलरली सारी सॉइल्स ऐसे ही कलेक्ट की गई है। तो इस सॉइल को हमारे एक रॉयल अरुणाचल राइडर्स, एक ग्रुप ऑफ राइडर्स है, उन्होंने पूरी इंडिया ट्रैवल करके ये सॉइल्स कलेक्ट की है। टू बी प्रिसाइज उन्होंने 25 डेज में 21 स्टेट्स कवर की है, और जो रेस्ट ऑफ द सॉइल्स है वो उनके बाइकर्स ग्रुप की कनेक्शन द्वारा यहाँ भेजी गई है।
1: जी जी, तो इस म्यूजियम के अंदर स्थित द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन हमें ये बताती है कि हमारे इस महान देश के लिए देश भर में जहाँ जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो उन पवित्र जगहों से हमारे अरुणाचल प्रदेश के राइडर्स ने उन पवित्र माटी को लेकर आए, और हम आज उन सारे जगहों पर जाकर देखना तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस संग्रहालय के अंदर आकर आप उन सारे पवित्र जगहों का दर्शन कर सकते हैं। जी चलिए, तो सनली जी, आप हम म्यूजियम के दूसरे सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आप हमें बताइए कि मेजर बॉब खाटिंग अ लाइफ ऑफ वेलियर क्या कहता है, क्या इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को ये जरूर जानकारी है कि हमारे तवांग को भारत देश में शामिल करने में मेजर रालंगना बॉब खाटिंग जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो आप हमें बताएं।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर जब आप सोल ऑफ इंडिया देखेंगे, उसके बाद आपको मेजर खाटिंग की जो लाइफ हिस्ट्री है उनके बारे में, उनकी लाइफ टाइम लाइन, वो सारी आपको देखने को मिलेगी मेजर खाटिंग की गैलरी पर। तो इस गैलरी पर हमने उनकी लाइफ फेसेस रखी है, तो सारी उनकी अचीवमेंट्स, जो पोजीशंस उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, और वो कहाँ पर पैदा हुए थे वो सब। तो आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको खुद म्यूजियम पर आकर विजिट करके सब कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, यहाँ पे आपको जब आप इस गैलरी पर आएंगे तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, बिकॉज आप जो उन्होंने तवांग ले किया था वो शायद बहुत बड़ी बात है, और वो एक बहुत महान इंसान भी थे, बिकॉज एक ट्राइबल इंसान होके उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, वो एक टीचर थे, एक सोल्जर थे, पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर वो डिप्लोमेट भी थे, उसी वजह से हमने ये म्यूजियम उनकी याद में बनाया है। और उन्हें एक्चुअली 1957 पर पद्मश्री भी मिला था, तो वो मणिपुर के पहले ट्राइबल इंसान थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। फिर उन्होंने अपनी एंड ऑफ करियर में बिफोर रिटायरमेंट वो एम्बेसडर टू बर्मा की तरह भी सर्व किए थे, उस समय भी वो एक ओनली ट्राइबल फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम इंडिया हु सर्व्ड एज एम्बेसडर टू बर्मा थे। एंड अगर आप आगे मूव करते रहेंगे तो आपको उनकी पर्सनल आउटफिट्स देखने को मिलेगी, उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने यू नो मेजर खाटिंग के बारे में मेमोरी शेयर करते हुए आपको देखने को मिलेगी इस गैलरी पर।
1: जी, हमें इस सेक्शन के अंदर आने के बाद ये पता चलती है कि मेजर खाटिंग ने अपने जीवन में किन पदों को प्राप्त किए थे, किन पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किए थे, और उनके द्वारा उपयोग किए गए चीजें, उनके कपड़े, और यहाँ तक कि उनकी असली आवाज हमें सुनने को मिलता है। और जैसे कि सनली जी ने कहा कि सचमुच हमें ऐसा लगता है कि मेजर खाटिंग यही है और हम उनके घर आए हुए हैं। और ऐसे ही हम सनी जी के साथ बातें करते करते अब म्यूजियम के तीसरे सेक्शन पर पहुंच चुके हैं, जिसके नाम है द टेकिंग ऑफ तवांग 1951। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: तो मेजर खाटिंग यहाँ पर 1951 पर आए थे, और उन्होंने तवांग को 1951 पर ही तिब्बत से आजाद करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था, बिकॉज एट दैट टाइम तिब्बत के अंदर था तवांग, इट वॉज अंडर तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये जो टेकिंग ऑफ तवांग गैलरी है, ये आपको पूरी कहानी इन अ वे, सो इट नेरेट्स द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही इंटीग्रेटेड तवांग इनटू इंडिया। तो उनकी जर्नी कैसी रही, कौन लोग थे जो इस इंटीग्रेशन पर इन्वॉल्व थे, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। एंड दो जो लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पे यू नो दे हैड हैंड इन दिस इंटीग्रेशन वाज जयराम दास दौलतराम, हु वाज देन द गवर्नर ऑफ असम, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। नो बिकॉज ऑफ हिम वी आर लाइक इट वॉज रिकग्नाइज दैट तवांग नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया। सो ही वॉज द बिग ब्रेन बिहाइंड दिस होल ऑपरेट, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल तवांग हिज लास्ट गिफ्ट टू इंडिया। एंड एस वी मूव ऑन, इस गैलरी पर आपको मेजर खाटिंग की खुद की हैंड राइटिंग एंड अगेन इंटरव्यूज, जहाँ पे पीपल आर शेयरिंग द मेमोरीज और देयर एक्

0: एक्सपीरियंस या जो उन्होंने फील किया था इंटीग्रेशन के वक्त, वो मेजर कटिंग के बारे क्या सोचते थे और टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे क्या सोचते थे, वो सारी आपको इस गैलरी पर देखने को।
1: जी जी
2: जी। अब हम म्यूजियम के अंदर यूं ही चलते हुए अब ऐसी एक मजेदार सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है मॉन्यूल ब्लेस्ड लैंड ऑफ द मोनपा, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं कि मोनपा जनजाति के लोग पुराने जमाने में किन चीज़ों के उपयोग करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए, पहनने के लिए, और कपड़े किस तरह से बुनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बुद्धिज्म के इतिहास। तो इस बारे में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, और जो बाहर से पर्यटक आकर यहाँ देखते हैं उन सारे आर्टिफैक्ट्स को, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होगी कि इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको जानना है तो आपको आगे डिजिटल सेक्शन की ओर बढ़ने होंगे, और वहाँ पर आपको सारे चीज़ों को उपयोग किए जाने वाले वीडियो देखने को मिलेंगे।
0: सो दिस गैलरी इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ मॉन्यूल। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस गैलरी की एक यूनिक बात ये है कि जब आप आएंगे तो आप आर्टिफैक्ट्स को एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। यूजुअली आप जब म्यूजियम पर जाते हैं तो आप डू नॉट टच वाले साइन देखते हैं, पर इस गैलरी पर आप एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। तो आफ्टर आप वो गैलरी पर टच एंड फील करके आएंगे, उसके बाद आपको डिजिटल गैलरी देखने को मिलेगा। तो इस गैलरी के बिहाइंड थॉट प्रोसेस ये था कि आप वहाँ पर सब कुछ फील टच करेंगे और यहाँ आके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिजिटल कॉन्टेंट्स होंगे, तो आप यहाँ पे लाइफ ऑफ ब्रॉक पास देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहाँ पे आरा बनाने वाले यूटेंसिल देखे हो, तो फिर आप यहाँ पे देख सकेंगे कि आरा किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 टीवी पैनल्स है जहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। एनी अदर, छुरपी कैसे बनती है, ब्रॉक पास कैसे जीते हैं, जो आप शिंखा पहनते हैं मोनपास लोग, तो वो कैसी बनती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड एट लास्टली वी हैव यहाँ पे जो होलोग्राम, दिस इज अ टेक्नोलॉजी, उसे होलोग्राम फैन कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आपको एक AV डिस्प्ले देखने को मिलेगा, दैट्स ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको तोरग्या, जो यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो वो डांस फेस्टिवल और जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका भी एक ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्टली आई फॉरगॉट टू मेंशन, लेकिन जो मोनपा गैलरी है वहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी, दैट्स VR हेडसेट्स, वो भी आपको मौजूद दिखेंगे। तो वहाँ पे हमने 3 मोनेस्ट्रीज, जो तवांग के इन एंड अराउंड सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज की तरह जाने जाते हैं, दैट्स क्रोमतेन, किमनास और तकसंग, वो 3 गोम्पा के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इन मोनेस्ट्रीज में जाने के लिए, एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है, एंड अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो इधर आपको बहुत हाइक करना पड़ता है, या फिर फूड रिस्ट्रिक्शन से आप रसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते। तो बाहर से विजिटर्स आएंगे तो अगर वो 2-3 दिन के लिए आएंगे तो एक पूरा दिन वो इन मोनेस्ट्री पे डेडिकेट नहीं कर सकते, या फिर जो बूढ़े लोग हैं यहाँ के या बच्चे हैं, वो इतने स्ट्रेंथ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो वहाँ पर जा सके, पर उन्हें फिर भी अगर वो म्यूजियम पर आएंगे तो बिना वहाँ जाए उनके मॉनेस्ट्री के दर्शन हो जाएंगे, उसी वजह से हमने वो रखा।
1: तो चलिए, हम एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं, एक ऐसी सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें मेजर खाटिंग की असली स्वर सुनने को मिलते हैं, तो इस बारे में बताइए।
0: सो इस सेक्शन पे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिजिटल गैलरी, तो यहाँ पे आपको मेजर खाटिंग की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो 1985 पे, उनके मृत्यु के 5 साल पहले, वो तवांग फिर आए थे तवांग की कंडीशन चेक करने के लिए, तभी उन्होंने आकाशवाणी तवांग जो है वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी। तो उसी इंटरव्यू के बदौलत हम ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, हम उनकी आवाज़ आज सुन पा रहे हैं, बिकॉज प्रायर टू दिस उनकी कोई रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो कुछ मौजूद नहीं थी। तो इट्स ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, वी आर एबल टू लिसन टू हिज वॉइस राइट हियर इन द म्यूजियम। एंड आफ्टर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे, फिर आपको फ्लैग इन, प्लान द फ्लैग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो हमने प्लान द फ्लैग इसीलिए बनाया था बिकॉज उन्होंने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झंडा, हमारा इंडियन फ्लैग गाड़ कर ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था यहाँ पर तवांग पर। तो हम हमारे विजिटर्स को वही सेम फीलिंग, जब मेजर खाटिंग ने झंडा प्लांट किया था तो वो सेम फीलिंग हम उनको देना चाहते थे, उसी वजह से हमने ये सेक्शन प्लान द फ्लैग बनाया है, जहाँ पर

0: अपना खुद का झंडा गाड़ कर वो सेम फीलिंग शेयर कर सकें। फिर आप तो अभी हम टूवर्ड्स द एंड आ चुके हैं, तो आफ्टर प्लांट द फ्लैग आपको पिक्चर ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप सरदार पटेल एंड मेजर खटिंग, जो दो ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिसके वजह से हम यहाँ तवांग पर खड़े हैं एंड इट्स पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उन दोनों के साथ भी फोटो ले सकते हैं। एंड लास्टली हम फिर एंट्री फॉयर पर ही आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक कोट भी देखने को मिलेगा, तो वो सेम आकाशवाणी तवांग, वही सेम 1985 इंटरव्यू की है, जहाँ उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप जो यूथ्स ऑफ तवांग हैं उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो आपको वो कोट दिखेगा जो मेजर खटिंग यहाँ के यूथ्स के लिए छोड़कर गए थे।
1: जैसे कि सनली जी ने म्यूजियम के अंदर चलते चलते हमें इस म्यूजियम की विशेषताएं के बारे में बताएं, तो हमें काफ़ी अच्छे लगे इस बारे में जानते हुए। और अब हम वापस एक बार प्रवेश द्वार के सामने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम यहां से अभी जा नहीं रहे हैं, बल्कि हमें कुछ और सेक्शन के बारे में और जानने हैं, क्योंकि हमारे अभी गैलरी गाइड लोबसांग छिकी जी से मुलाकात करनी तो बाकी है। तो जी हाँ, हम अब लोबसांग छिकी जी से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के गैलरी गाइड। तो लोबसांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं, जिसे मेडल सेक्शन कहते हैं, तो इन मेडल्स की क्या विशेषता है, आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: ये सेक्शन जो उनका मेडल सेक्शन है, लाइक वो कुछ गिना चुना इंसानों में से था जिनको दोनों गवर्नमेंट से मेडल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी मिला था और इंडियन गवर्नमेंट से भी मिला था। ये उनका फर्स्ट मेडल है, मिलिट्री क्रॉस मेडल, और इनको रिसीव किया था 1944 में, और इसको दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर ने, और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। और उनका वर्मा स्टार मेडल है, उनको इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल मिला है, उनको पद्मश्री मिला है, और उनको पद्मश्री मिला है 1957 को, और उनको अरुणाचल रत्न भी मिला है, उनको अरुणाचल रत्न मिला है इन 2020-21, और वो दूसरा इंसान था जिनको अरुणाचल रत्न मिला। और फ्रॉम 1987 टू 2020-25 अभी तक में सिर्फ तीन ही को मेडल मिला है, और वो दूसरा इंसान है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उनका अचीवमेंट सब यहाँ पे आप देख सकते हैं और उनका आवाज सुन सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे उन्हीं के सामने बैठे हो, उन्हीं का आवाज सुन रहे हो।
1: हम आगे बढ़ते हुए अब इस सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जिसके नाम है 1962 द वैलियंट वॉरियर्स। इस बारे में फिर हम चिकी जी आपसे जानेंगे, इस बारे में आप हमें बताएं।
2: ये जो सेक्शन है वो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और जैसे कि आप सभी को मालूम है 1962 में इंडिया में वार हुआ था, वो दो साइड से, एक अक्साई चीन और एक तवांग से। और तवांग में उन्होंने असम तक पूरा चाइनीज आर्मी चले गए थे, पर जो अक्साई चीन है वहाँ पे उन्होंने 2400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और वो अभी भी उन्हीं के अंदर में है। और यहाँ पे एक पर्सन है, उसका नाम है नीलम तिपी, वो पूरे अरुणाचल से वो अकेला ही था जिन्होंने 1962 वार में हिस्सा लिया था। ये निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और अगर आप यहाँ पे 1962 गैलरी में आते हो तो आपको यहाँ के 1962 वार के ऊपर में उनके बैकग्राउंड के बारे में सब पढ़ने को मिलेगा, न्यूज कवरेज को देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे उन्होंने कौन से एरिया से उन्होंने तवांग में एंटर किया था वो सब मैपिंग देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 1962 वार में जितने भी गन्स वेपन्स यूज हुआ है वो सब आपको ओरिजिनल देखने मिलेगा। और 1962 वार में जो शहीद हुए थे और उनको जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, उन सभी को आपको देखने मिलेगा ये गैलरी में, और शहीदों के नाम, और यहाँ पे कुछ मूवीज है जो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और कुछ बुक्स जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे रेजिमेंट्स है जिन्होंने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया, उनका सिंबल है, और यहाँ पे 56 रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया था।
1: जी, तो अब हम एक बार फिर द लैंड ऑफ मोनपास के सेक्शन में पहुंच चुके हैं, तो इसकी जो डिजिटल सेक्शन है इस बारे में हमें सनली जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि छिकी जी आप हमें एक बार फिर यहां पर रखे गए आर्टिफैक्ट्स है, कपड़े है पुराने जमाने के, और बुद्धिज्म के इतिहास है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जैसे कि 1951 में मेजर बोब खाटिंग यहाँ आए, उन्होंने तवांग को इंडिया के साथ मर्ज किया,

0: और उसके बाद 1962 का वार, जो जवान इतने शहीद हो गए, और ये सब किसके लिए? क्योंकि ये हमारे जो यहाँ तवांग के जो लोकल है, यहाँ पे जो ट्राइब पाया जाता है मोनपा, उनके लिए, उनका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उन यहाँ के मोनपा पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए उनको दिखाए कि हमारा पहले कल्चर क्या हुआ करता था, यहाँ के लोग लोकल जो है, यहाँ के लोग है जो क्या पहना करते थे, क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे, और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो इवन लोकल से अगर वो भी यहाँ आते तो उनको अपना ट्रेडिशन को देखने को मिलता है. जो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ है जो अभी सभी जगह में पाया नहीं जाता है, और कुछ ऐसा चीज़ है जो जिन्होंने यहाँ के जो अभी यूथ है उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो वो सब यहाँ पे दिखाया गया. जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पे जैसे कि लेदर बैग है, और यहाँ पे जो कॉइन है जो पहले यूज हुआ करता था, यहाँ पे वेट मशीन है जो पहले यूज हुआ करता था, स्टोरेज बॉक्स जो अंदर से बैम्बू से बना होता है और बाहर से उसको स्किन से कवर रहता है, और यहाँ पे लोकल हाउस को 3D पेंटिंग में भी दिखाया गया है कि उन यहाँ पे लोकल घर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हैंडक्राफ्ट कैसे हुआ करता है, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है. और यहाँ पे VR भी है, वर्चुअल रियलिटी. तो ये ऐसा है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं. ये ऐसा मोनेस्ट्री का व्यू कैप्चर किया है जहाँ पे टूरिस्ट इजीली नहीं पहुँच पाते या उनके टूर में वो कवर कर नहीं पाते, और कुछ ऐसा जगह है जैसे कि क्रमतिन गोनपा जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पे चल के जाना पड़ता है. तो आपको यहाँ पे ही बैठ के उसको जैसे कि आप वहीं पे हो ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं. तो यहाँ पे ये सब दिखाया गया है, और इवन यहाँ पे हमारा कल्चर जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सब बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है. और जितने भी हमारे यहाँ के 7th century से जैसे कि मेराकलामा लोटे ग्याजो, उनके बारे में, मेराकलामा लोटे ग्याजो जैसे कि तवांग मोनेस्ट्री बनाए उनके बारे में बताया गया है. जैसे कि 7th century में केप कलावांगपो थे उनके बारे में लिखा गया है, गुरु पद्मा समावा के बारे में लिखा गया है, बुद्धिज्म कैसे आए और बुद्धिज्म से पहले हम क्या प्रैक्टिस करते थे, और यहाँ पे हम ये सब अपना जो मोनपा का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब यहाँ पे शो किया गया.
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
2: जी. तो आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम यहाँ मेजर बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आने के बाद, यहाँ सारी चीज़ों को देखने के बाद और आप दोनों से मिलकर बातें करने के बाद हमें ये समझ में आती है कि मेजर खाटिंग ने तवांग को भारत में शामिल करने में कितने कठिनाइयों का सामना किया और उनके कितने बड़े योगदान हमारे लिए रहे हैं, और उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज हम अपने आप को पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम भारत के सबसे सुंदर जिला में से एक तवांग से हैं. और साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखना है, और उनके सारे चीजें, उनके सारे यादें इस म्यूजियम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और हम तवांग वासी मेजर खाटिंग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे. धन्यवाद.
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला मंच के अंतर्गत मेजर रालेंगनाव बॉब खाटिंग वीरता संग्रहालय की संग्रहालय समन्वयक कुमारी सानली लिगम सिंगफो और संग्रहालय मार्गदर्शिका कुमारी लोपसांग चोकी से मेजर रालेंगनाव बॉब खाटिंग वीरता संग्रहालय के महत्व विषय पर हुई भेंट वार्ता. उनसे भेंट करता थे दर्जी ट्रेमा. यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय दोपहर के 3:51 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी.

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए वेकअप सिड फिल्म से कविता सेठ की आवाज में, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लोहिया का।

अगला नगमा पेश है निखिल डिसूजा और अमित त्रिवेदी की आवाजों में। आयशा फिल्म के इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

एंटरटेनमेंट फिल्म से सुनिए अगला नगमा अतीफ असलम और शालमाली खोलगारे की आवाजों में। सचिन जिगर द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है प्रिया पांचाल ने।

अदीब असलम और ज्योतिका टंगरी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे लैला मजनू फिल्म का नगमा। गीतकार इरशाद कामिल और संगीत जॉय बरुआ का। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अगला नगमा सुनिए रमैया वस्तावैया फिल्म से अति वसलम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। प्रिया पांचाल के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है सचिन जिगर ने।

थ्री इडियट्स फिल्म से सुनिए अगला नगमा सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की आवाजों में। बोल स्वानंद किरकिरे के और संगीतकार शांतनु मोहित्रा।

शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का नगमा, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत प्रीतम का। श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए बागी फिल्म से मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाजों में, बोल कुमार के और संगीत मीत ब्रदर्स का।

बागी फिल्म के इस नगमे के साथ ही फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन बीना वादन। राग है बागेश्री तथा तबले पर संगत दिया है सुफिंदर सिंह नामदारी ने।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे बागीश्री राग पर पंडित विश्वमोहन भट्ट से मोहन वीणा वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है, अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफा की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जल मरुमध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमले से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस के आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गैंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुलिस को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डीप फेक आदि से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज राष्ट्र की असाधारण सेवा, अतुट अनुशासन और समर्पण के लिए देश को पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग और SM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पूर्ण मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियों पुनर्निर्धारित की गई है। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दोर मैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्दोर मैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कीडी के शिवकुमार मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्दोर मैया ने आज बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगी को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल मरुमध्य के पास एक दूसरे पर हमला किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सेने टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल मरुमध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें जहरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमले में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए थे। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभिषेक देव रॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों से बंगाल को मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने पदभार ग्रहण करते ही घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए पता लगाओ हटाओ निवर्षित करो नीति लागू की। इस योजना के तहत घुसपैठियों को हिरासत में लिया जा रहा है और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। यह बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हाओ यांची ने किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमेनेज सम्मेलन का दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस को से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। बिहार की उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है।
दो दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना

0: करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक और महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासत निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एक मुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एक मुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कार और यात्री तथा माल कार से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मिघाड़ा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पुल ए में रखा गया है। पुल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, टाइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। President Draupadi Murmu today urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran Parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim police in maintaining law and order and in disaster management. Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. The announcement was made during the convocation ceremony of Sikkim University in Gangtok yesterday in the presence of President Murmu. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today assured resolution of all grievances of students regarding discrepancies and technical glitches in CBSE Class 12th examination evaluation process and its newly introduced on-screen marking OSM system. Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. He was speaking to the media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi. The minister said that officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability is maintained at all levels. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month will be released soon. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said the country has ample food stocks due to relentless efforts of the India's hard-working farmers. Mr. Chauhan was speaking at the inaugural ceremony of the two-day National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi today. The minister highlighted that the estimated food grain production in the country this year is over 376 million tons, which is 5.3% higher than last year. The minister also said that the two-day event will help in setting a roadmap for the welfare of the Kharif agriculture sector. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar met his Spanish counterpart Jose Manuel Alvarez on the sidelines of the informal meeting of the EU Foreign

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर मोनबा में कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए मोनराती एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा सका दवा के अवसर पर बुद्धा पार्क तवांग में आयोजित 9वें दिन का धर्म शिक्षण कार्यक्रम का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:11 पर फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक में आनंद लीजिए। युवराज फिल्म से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल, गजनी फिल्म से श्रेया घोषाल और बेनी दयाल, फाइटर फिल्म से बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल शेखर, बैंड बाजा बारात फिल्म से हिमानी कपूर और बेनी दयाल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से नाजिया हसन, बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी, ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शिफाली आल्वरेस, और एक मैं और एक तू फिल्म से बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा के आवाजों में गायक बेनी दयाल द्वारा अन्य गायकों के साथ गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमे। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए गुंजन सक्सेना फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 29 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए पहले गांधी स्मृति, तत्पश्चात गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद हिंदी भक्ति गीत कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक ईदू मिश्मी नगमों का आनंद लीजिए संगम लिंगी और ओतोगी म्यूली के आवाजों में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम मेरी बात, महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू निगम, और हेलीकॉप्टर ईला फिल्म से पालोमी घोष के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए एक विलन फिल्म से अंकित तिवारी, गुमराह फिल्म से जारा खान, अरमान मलिक और सलमा आगा, बागी फिल्म से मीत ब्रदर्स अरिजीत सिंह, रोज किला और खुशबू ग्रेवाल, अनजाना अनजानी फिल्म से शेखर रवजियानी और कैरिलिसा मोंटियरो,

गजनी फिल्म से जावेद अली और सोनू निगम, खट्टा मीठा फिल्म से के और सुनिधि चौहान, सिंग इज किंग फिल्म से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल, विक्की डॉनर फिल्म से आयुष्मान खुराना, बागी फिल्म से अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर और जीनियस फिल्म से अरिजीत सिंह के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मुनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए महामहिम टुल्कू तेंजिन ग्युरमे रिमुचे जी से आचार्य शांति देवा द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन मार्ग का उपदेश कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में। कल शाम 5:35 पर मुनपा में कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए मौन राति एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा साका दवा के

महामहिम टुल्कू तेंजिन गुरमे रिमुचे जी से आचार्य शांति देवा द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन मार्ग का उपदेश कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर मोनपा में कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए मौन राति एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा साका दवा के अवसर पर बुद्धा पार्क तवांग में आयोजित 10वें दिन का धर्म शिक्षण कार्यक्रम। लेरिम सेरा शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनिए मोन्ट्राथी एजुकेशनल और एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित 10वें दिन का धर्म शिक्षण कार्यक्रम का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 बजे तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 5वीं कक्षा के विद्यार्थी श्री टाशी वेसर से एक हिंदी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण में आनंद लीजिए सिलसिला है प्यार का फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू, प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से उदित नारायण, प्यार कोई खेल नहीं फिल्म से कुमार सानू, मोहब्बती फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण, कुछ कुछ होता है फिल्म से उदित नारायण अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से लता मंगेशकर और हम तुम फिल्म से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो के आवाजों में संगीतकार जतिन ललित द्वारा संगीतित चंद हिंदी फिल्मी नगमे। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए स्वदेश फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 बजे आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: ग्रोकन कर्म खेलों दूर दा शेदन लेरम चिको जो दूर देश उद लेरमा दुजिन खेबर चन शिबसक दवा देश चेस चिंगने दुगप गा बुद्धा पर का छे युगन मिमंग लंगे बाशल किसी थुतुन गेदुन सी ससुर छेडे नकपो निंग कर्प लेंडे संभा दिग्पा मेगेवा ड्रिबु सेजी राधमकुर नमो दोदना सुजलेह कंकर्म खेल चिलंग जे मन बिलेर मा सन मेजिक मार मुथिया सन नंगसा
1: ता दिनरो सोदो जी हलम दिबु पुजो सेदो छ्यो नमे दिबु पुजो सीगो नि दिबु यावा यु सीगो नि दिबु चीवा छि लामनिंग सांगे नि ताई गा मिना चाजु सेबनिंग इत मेनो गो छि रंग फामनिंग केरगेनिंग ओ उदना सोदो यना शीगोने दिबु चीवा दिबु थेम शीग टॉक हिम जो हिन्या बुजि तोदो सर्मेजिक टॉक या दिबु थेशो छो ता दिबु थेशो पिशो न्यो इदान कंजु सियो गे मोसम तोदो सर्मेजिक दि नारा दि देरगो सुसोनि रासोतोनिंग मिसोतो सु दिबु थेशो न्ये तोन लमसा मिसो दिबु थेशो न्या ग्या याको सु अनि गुमजेन सिलो न्ये मिचित सिटी केवक लेक टॉक या नदा मिलु न्यो थपको सिदि मे दान शेट मे उरे मिलु न्यो जि थपको मिक समलो जि दे दुंदो ना या ने मिक समलो जि ने मिगु थेशो तोन दे नो जिनो से यंग मैटी मिसी हफ्ते यू नो यंग वी गिव ले की ट्रिव्यू इन केवा साया तबो लुई इन द बेस इजी बे जिनामिम दा मिसो दु दिगु देशो नि ता दुनजो सो दो ने जे दा दे लमनांग सुंग जुन नेगा दुनजु नेगा दे पोंग देशो लाब छे सो दो इमे इजी मार बा सो दो इजी मार राजिंग यंग सो दो इजी मार कोन सो दो ता प्रिदा ले ही उम दिला सो जु नो मे जु रे ओ इत पा जी दिगु देशो प्रिशो ती दु पेनांग लुक थेशो प्रिशो तो लुको थेशो ने इजिक हिसाब का दुंगे थेशो नम ये दमे दुंगे थेशो इजिक दे लु भलम प्रिशो ने दुंगे थेशो मदा मि नत बया वे ना इ निमे अनु ना शा ने सो ये अनु ना ने छब यांग शो नो लु प्रिशो ने मे ओरे मदा शि छम बे ने सो मदा शि छब लि शो नो अनु ना शि छब प्रिशो नो जिन पे लु प्रिशो जिक दे मे मदा इ सम हलम खोर गो सो या बो लु थेशो सो तो को थेशो ने इजिक शी गो ने दि ब जी वे द मीनिंग इ दे यार सो हिम शो दे दुंजो ने ना ये चांगी कोने रंका ते पे ना दांगा दांग कुन्नु से कलप ठीक है नोम ये रिश्या क्या है मायन ना चीशे क्या ने चीशे ये ना सेम्जन ही जो रिश्या क्या हो सुन बासे मत तो ना ता उम ना हिम ता जेमी नांग सिजो तो लो ये ना कौन ब्रू ब्रू ब्रू काम बोल बे थाल दिन ना दर न्योप ना दांग तो कौन सी अमीर दिमे न्योप बाजी के और चेक मनुष्य फ्रो योर के दिमे मिस्टिक तो चेक आर फ्रो योर दिलांग के दिम पे ना बाती सी मिक्यादी सी दांग युम इचिक ता मिस्टिक तो चेक आर कौन योर फ्रो का के युबेस रंगा थो या दे दिबे जो सिगिन इमेदा न्या छसो ने न्या थेशो थी छसो नि न्यो बियोर दि छसो ने दिबे जो सुनो ने न्यो बियोर दि छसो दिबे थेशो नो ने को सो मांग शो गे इमे ओ या ता शी को ने दिबे चीवा हा को सो दिबे थे सिदा हो ये सांबे को ने सांबे को ने दिबे चीवा ता सम लो थो इम जो दे दिबे थेशो ता बाकी जेदा मनो या सो को सो ले रो दम ना पोना सी इन सोत को निला सिला या को ने ने अजिक बिना रावण मनो या सोत को सोला इमे दा इ सोदो बाजी ता साबे को ने दिगो यावा ता साबे को ने पे खोंग्रो नि ngalje ni prado ne mi yu shi jin ya ya samlo mo do di thong ya sodo yin saabe go ni dibu jiwa yin da pe ne mi sodo ti ga yi mi ti sodo yin da pon odro ya ye jeda mono ya gemina ya sodo mi sodo be aji to mem da thong ye ji odro ong ji be mem da thong sodo ko pe na so ju de bo monum da ut mo do sodo yin a i saabe go ni dibu yang wa yin ta khong ji ja ra be sodo ma do gri mon sa me khong ju xin ni ya ya be mi ji sodo yin saabe go ni dibu den jo yin ya bo bin ni dibu mi sodo ti yim shin da re dibu den jo bi jo ge me ore ओ सांबेगोने दिगुजियाइम जोरोन्येना सोतांगथोगिमते सोतांगजे तुमशिदोयासोदो इन सेति दिगु यांशोसेतु पे मोसोतेना दुखनेमग्योथोंया सोयुतिनोमदा लागादेनोदा शिमोनमेनागा शिनाजिबे लाबनेनावया फोरिया लमसामोसोतोया फोरिया जिक्सोयुतिनोमदा इसोदो दिगुनिजोतेतु सिम्बोंब्रेगा जेक्नेसोतों हलाबिबियासो उयाबो फोरिया जिबे सोतोमेओले जोरोगोने सदांग तो गया वो या फोर या तो ने निंजुम ग्रुप दिन ग्रुप दिन सो मिले जी ये दांग ना जी ये रामा दांग ये वो या ब्लॉन्डिंग ब्लॉन्डिंग वो जिम या बो चौरानी ने सदांग इम्शो सी ने तो तो सद मची या सांबानी ने सो जुक सांबलो जी दिया सांबलो तुक्जा ने मन तो गया चौरानी

0: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारामैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

0: Good evening to all. My name is Tashi Drima Gyamo. I am from LD Scholars Home and I study in class 5. Today, I am going to recite a poem and my poem is Teamwork. Teamwork, teamwork, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done, teamwork everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on. If nobody wants to pass the baton, we are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Thank you.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 5वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी टाशी ड्रिमा ग्यामो से एक अंग्रेजी कविता।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:12 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। एक और अनेक कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे गायक बेनी दयाल द्वारा अन्य गायकों के साथ गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमे। तो चलिए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं युवराज फिल्म से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में, बोल गुलजार के और संगीत AR रहमान का।

अगला नगमा पेश है बेनी दयाल और श्रेया घोषाल के ही आवाजों में। गजनी फिल्म के इस गीत को लिखा है प्रस्तून जोशी ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

फाइटर फिल्म से सुनिए अगला नगमा बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल शेखर की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत गायक बेनी दयाल द्वारा अन्य गायकों के साथ गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। बैंड बाजा बारात फिल्म से बेनी दयाल और हिमानी कपूर के आवाजों में। सलीम सुलेमान द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है अभिजीत श्रीवास्तव ने।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अनविता दत्त का लिखा नगमा, स्वर बेनी दयाल, नाजिया हसन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी के, और संगीतकार विशाल शेखर। अगला नगमा पेश है ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शिफाली आल्वारेस की आवाजों में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, एक और अनेक कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा की आवाजों में। एक मैं और एक तू फिल्म के इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सवारा है अमित त्रिवेदी ने।

एक मैं और एक तू फिल्म के इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादू याजो। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के प्रत्येक अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने और अवैध घुसपैठ को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल को एक सप्ताह के भीतर 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भी बधाई दी। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने यह समीक्षा भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय कार्यप्रणाली की 35वीं बैठक के दौरान की। यह बैठक कल बीजिंग में आयोजित हुई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता रचनात्मक और भविष्य उन्मुख रही। दोनों पक्षों ने सीमाकान, सीमा प्रबंधन, तंत्र निर्माण और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक शीघ्र आयोजित करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता के परिणामों के तहत सहमत व्यवस्थाओं सहित राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित संवाद और संपर्क बनाए रखने पर सहमति भी व्यक्त की। कृषि राज्य मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने आज याजाली में दो दिवसीय अरुणाचल प्रदेश जीव विविधता एवं एमवीएम लीड सुनाम बीज उत्सव 2026 का उद्घाटन किया। उत्सव का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन की तेज होती चुनौतियों के खिलाफ राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने स्थानीय संरक्षण प्रयासों की सराहना करते हुए विशेष रूप से जीरो के हागे नानिया को बधाई दी, जिन्होंने लोअर सुबनसिरी जिले की 12 स्वदेशी धान किस्मों के लिए पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के लिए आवेदन कर स्थानीय कृषि संप्रभुता की रक्षा का कार्य किया है। उद्घाटन दिवस का समापन अरुणाचल कृषि जैव विविधता महोत्सव एवं सतत आजीविका प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ, जिसमें केई पन्योर और लोअर सुबनसिरी के सामुदायिक बीज संरक्षण, वन पशुपालन विभाग, स्पाइस बोर्ड तथा नारा आवाज से स्थानीय उद्यम शामिल हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली के से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज जीरो पहुंचा और जिले के व्यापक दौरे की शुरुआत की। आयोग की अध्यक्ष विजय राहतकार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यशोदा एआई पहल की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक को मानवीय रूप देकर माताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की दैनिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। प्रतिनिधिमंडल ने गांव के बुजुर्गों, युवतियों और स्थानीय परिवारों के साथ स्वास्थ्य एवं आजीविका विभागों द्वारा संचालित केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर जागरूकता बैठक की। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त तासो गांबो ने आज सुबनसिरी पुल का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए उपायुक्त ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सुबनसिरी पुल को वर्ष 2022-23 में ट्रांस अरुणाचल हाईवे के तहत वेस्ट सियांग और लेपारादा जिलों को जोड़ने के लिए स्वीकृति दी गई थी। बासर विधायक न्यावी जिनी दिर्ची ने आज दारी में जीएपी ऑफ रोड चैलेंज चैप्टर 2.0 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रीन एडवेंचर पार्क जीएपी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इस एडवेंचर चैलेंज का उद्देश्य एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देना है, ऑफ रोड ड्राइविंग कौशल को निखारना और पर्यावरण जागरूकता को प्रोत्साहित करना करते हुए अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को पारदर्शित भी करना है। ऑफ रोडिंग चैलेंज में असम, मेघालय और राज्य के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। तवांग उपायुक्त नामग्याल अंगमो ने आज डीसी कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में मार्च 2026 तिमाही के लिए त्रैमासिक डीसीसी डीएलआरसी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्धियों और लक्ष्यों की समीक्षा की गई। जिले के क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में सुधार और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग पहुंच को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज़।

0: आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:56 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम देशभक्ति गीत के अंतर्गत अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति नगमा।

समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। आप सभी के फरमाइश पर प्रस्तुत है अजनबी फिल्म से किशोर कुमार का गाया गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीत आर डी बर्मन का।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है मजनू का टीला दिल्ली से कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक से कालिया फिल्म का नगमा। इस नगमे को गाया है किशोर कुमार ने, लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। निमनाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत सिंह और करमजीत कौर के फरमाइश पे सुनिए चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार का गायक गीत। अमित खन्ना के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है बप्पी लहरी ने।

अगला नगमा सुनिए शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन कविता करण शक्ति रिया जाया और दर्शन बाई के फरमाइश पर तीसरी कसम फिल्म का नगमा बोल शैलेंद्र के आवाज मुकेश का और संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम का अगला फरमाइश किया है वेस्ट जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है सफर फिल्म से किशोर कुमार का गाया गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है मंड्रेलिंग तवांग से सोनम नरबू के जांग त्रिंग तेंजिन जोपा निमा सोनम और राजा ने। बादशाह फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक का गाया गीत, बोल समीर के और संगीत अनु मलिक का।

0: सो ने अतिरिक्त पॉइंट्स इकट्ठा करके आर्मागेडन गेम को अपने नाम कर लिया। तीसरे राउंड के बाद फिरोजा एक और शानदार प्रदर्शन के बाद तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है। नॉर्वे चेस विमेंस में एक बार फिर करीबी मुकाबले देखने को मिले। तीन क्लासिकल मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए और फिर मैच के नतीजे का फैसला आर्मागेडन से हुआ। मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जू वेन जून और जू जिनर का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। जू जिनर ने एक समय अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन वह इसे जीत में नहीं बदल पाई। जू ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। एना मुजी चूक और कोनेरू हम्पी ने भी एक संतुलित संघर्ष के बाद अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ पर खत्म किया। मुजी चूक ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। क्लासिकल चेस में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर रही और अंत में खेल ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके बाद आर्मागेडन ट्राई ब्रेकर खेला गया, जहां दिव्या ने आर्मागेडन गेम जीतकर अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। तीसरे राउंड के बाद दिव्या और जू जिनर ने आर्मागेडन में अहम जीत हासिल करके अंतर को थोड़ा कम किया। इसके बावजूद असुबाएवा नॉर्वे चेस विमेंस में अभी भी बढ़त बनाए हुए है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैप।
1: शतरंज की बाजियों से रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला और तनीषा क्रस्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करते भारतीय खिलाड़ियों पर आज की रिपोर्ट।
2: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अलग अलग अंदाज में जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि एचएस प्रणॉय कई गलतियों की वजह से बाहर हो गए। सिंधु ने 37 मिनट के भीतर जापान की रिको गुंजी को 21-9 21-12 से हराया। अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया की आन से यंग से होगा। लक्ष्य ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, क्योंकि दूसरे वरीय कुलावुत ने महज 2 अंक के बाद पीठ की समस्या के कारण रिटायर होने का फैसला किया। अब 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य का सामना जापान के कोकी वातानाबे से होगा। पुरुष डबल्स में चौथी वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 1 घंटे तक चले कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे के ली झी हुई और यांग पो सुआन को 21-15 11-21 21-18 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब उनका सामना मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोन ताई से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो भी अंतिम 8 में पहुंच गए, जिन्होंने जापान की युता वातानाबे और माया तागुची को 8-21 21-17 21-16 से मात दी। अब उनका सामना कोरिया के किम जाय ह्योन जांग और हाजियोंग तथा मलेशिया के चीन तांग जिए और तो ई वेई के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। प्रणॉय आखिरी गेम में बुरी तरह पिछड़ गए और 61 मिनट तक चले मैच में घरेलू दावेदार लो किन यू से 18-21 21-16 15-21 से हार गए। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब रुख करते हैं पैरा एथलेटिक्स की ओर। 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल ने कल पुरुषों की जैवलिन F64 कैटेगरी में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। बेंगलुरु में एक शानदार थ्रो के साथ अंतिल ने पैरा जैवलिन थ्रो प्रतियोगिताओं के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ा।
3: सुमित अंतिल ने 74.82 मीटर का थ्रो करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने 73.29 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसे उन्होंने 2022 के हांगचो एशियाई पैरा गेम्स में बनाया था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अंतिल ने साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में अपना खिताब बरकरार रखा। हरियाणा की ओर से सुमित ने 74.82 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने रजत और राजस्थान के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की ऊंची कूद के T64 कैटेगरी में पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रवीण कुमार ने 2 मीटर की ऊंचाई पार करके गोल्ड मेडल जीता, जबकि वरुण सिंह भाटी ने 1.84 मीटर की ऊंचाई पार कर सिल्वर मेडल हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दीप्ति जीवन जी ने

0: 400 मीटर T20 इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 57.84 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर T47 कैटेगरी में महाराष्ट्र के दिलीप गावित ने 47.64 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में हरियाणा के रिंकू ने अजीत सिंह और रवि कुमार को पछाड़ा। फील्ड स्पर्धाओं में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। हनी ने 60.70 मीटर का थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता, जबकि प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 में 34.04 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में गुजरात की निमिषा चक्कुंगल ने लंबी कूद का स्वर्ण पदक जीता, जबकि भावना बेन अजब चौधरी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब 37.01 मीटर के साथ अपने नाम किया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: रांची में हुए एथलेटिक्स फेडरेशन कप में कई रिकॉर्ड बने और इस प्रतियोगिता में भी एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रुक कर लेते फ्रेंच ओपन की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स में यानिक सिनर ने जुआन मैनुअल सेरुंडोले को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने थॉमस मचाक को हराया। महिला सिंगल्स में अमांदा अनिसिमोवा अरियाना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे। वहीं कल तीन बार के चैंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। रुक कर लेते हैं क्रिकेट की ओर। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान ने कल हुए एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से मात देकर क्वालिफायर टू में जगह पक्की कर ली।
2: कल महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए। राजस्थान को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 48 गेंदों में 125 रन की साझेदारी की। वैभव ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके साथ ही वैभव ने क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
3: स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड अगेन, ही इज पुटिंग ऑन अ शो दिस यंग मैन वैभव सूर्यवंशी। नाउ ओवर थर्ड, पुश द रोप्स बैक, स्लैम्ड अगेन, ही इज टॉयिंग विद वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ आवर गेम एट द मोमेंट।
2: वैभव 15 मैचों में 65 छक्कों के साथ 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं।
3: व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट अ प्लेयर, वंडर किड।
2: इसके बाद कप्तान रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की। ध्रुव ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। इसके अलावा ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार और नीतीश रेड्डी ने एक एक विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 19.2 ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। हैदराबाद को दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद ईशान किशन ने ट्रेविस हेट के साथ दूसरे विकेट के लिए महज 15 गेंदों में 51 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी, लेकिन ईशान 11 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सलिल अरोड़ा ने नीतीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। नीतीश 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलिल ने 35 रन की पारी खेली। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि यशराज ने 1 विकेट अपने नाम किया। वैभव को तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद वैभव ने कहा कि मैं जब तक क्रीज पर रहूंगा इंटेंट दिखता रहेगा।
4: सभी कोचेज ने बोला था कि जो प्रैक्टिस में करते आ रहा है वही इस गेम में करना है, एंजॉय करना है और प्रेशर नहीं लेना इस गेम का।
2: सचिन तेंदुलकर की ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए वैभव ने कहा कि गॉड ऑफ क्रिकेट से सराहना मिलना मेरे लिए गर्व की बात है।
5: काफी अच्छा लगता है सर, मोटिवेशन मिलता है आपको और सब जानते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट है वो, तो उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया है तो हमारे लिए काफी बड़ी बात है कि उनके ऐसे लेजेंड ने ट्वीट किया है, तो ऑफ कोर्स खुद में प्राउड की बात है।
2: अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान का मजबूत बल्लेबाजी क्रम किस प्रकार गुजरात की धारदार गेंदबाजी का सामना करता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो वैभव का सूर्योदय हो चुका है और उनके प्रदर्शन से पूरा क्रिकेट जगत जगमगाया हुआ है।

0: और अब रुख कर लेते हैं महिला क्रिकेट की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार आज रात 11 बजे कैम्सफोर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 30 मई को, वहीं तीसरा मुकाबला 2 जून को खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाली महिला T20 विश्व कप में अंपायरिंग के लिए ICC ने 18 सदस्यीय महिला अधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें मैच रेफरी GS लक्ष्मी सहित 4 भारतीय अंपायर शामिल हैं। फुटबॉल की भारतीय अंडर 20 फुटबॉल पुरुष टीम को AFC अंडर 20 एशियाई कप चीन 2027 क्वालिफायर्स के लिए ग्रुप बी में उज्बेकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। ये क्वालिफायर्स 25 अगस्त से 6 सितंबर तक ताशकंद में होंगे। और श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के

शैक्षिक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलतागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित

होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग

में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।